0: मेलोडी मुमिका
1: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी
0: द नोस्टाल्जिया यंग तपना पुडा
2: अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा तू परेशान है
0: हिंदी हिट
3: setiap Sabtu
0: 9 malam hingga 10 malam hanya di Pera FM untuk koma aja.
4: Nanti kita akan buka titi ya. Untuk rakan yang ini, nanti saya buat titi Pera FM.